में भी जो है कोई निज़ाम मौजूद ना हो। हम जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि जो अगर वो एक ट्वीट भी करता है तो उस ट्वीट के एक ट्वीट के अंदर जो है कंट्राडिक्शन नज़र आता है, शुरू के जुमले और बाद के जुमलों में कंट्राडिक्शन नज़र आता है, या एक दिन में दो चार ट्वीट हो तो हर जो ट्वीट में जो है वो, ये नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग इसको समझते हों, यानी इस तरह की सबको समझ में आता है, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं, इस हद तक पस्ती की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल भी बहुत सारे लोग जब गुफ्तगू करते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर उनके उनकी ज़िंदगी में एक बुनियादी उसूल और कानून नहीं होते, प्रिंसिपल्स नहीं होते, फ़िक्री निज़ाम नहीं होता, तो ज़िंदगी में बहुत सारे कंट्राडिक्शन नज़र आते हैं और वो इंसान ख़ुद अपने अंदर भी महसूस कर रहा होता है। लेकिन तारीख़ में ऐसे अजीम इंसान गुज़रे हुए हैं कि जिनकी ज़िंदगी शुरू से आखिर तक एक कानून के तहत रही है, और उसमें सबसे अजीम ज़िंदगियाँ जो हैं वो अंबिया अलैहिस्सलाम की, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की, और उन सब में सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और पाकीज़ा और अजीम ज़िंदगी ज़ाते गिरामी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बरहक वज़ीर और वसी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, जिस पर शहीद मुतहरी जैसे अजीम इंसान ने जो किताबें लिखी, जो मतालिब बयान किए हैं, तो उस मंतिक को, उन उसूलों को बयान किया है। लेकिन अभी हमारी गुफ्तगू इतने अजीम किरदारों के नहीं है, अभी हम जो है अंबिया की और आइम्मा की बात नहीं कर रहे हैं। एक बहुत ही अहम मसला जो हमारे सामने है वो ये है कि अंबिया और आइम्मा की ज़िंदगी से, उनकी ज़िंदगी के उसूलों से लेकर एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जाए कि जो एक मौजज़ा जैसी बन जाए। मौजज़ा इस माने में कि एक ऐसी दुनिया में इस क़दर तासीर होना किसी की ज़िंदगी की, किसी की सोच की, किसी के अफकार की, किसी की ज़िंदगी के साथ साथ उसकी शहादत की, इंसान अगर ये वाक़या पेश ना आता तो शायद सोच भी नहीं सकता था। और ये होता है कि बाज़ वाक़यात अगर पेश ना आए हों इस तारीख़ में तो इंसान सोच नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम अपने ज़माने में ये देख रहे हैं कि वाकई रहबर इनकलाब की जो ज़िंदगी रही है और जिस तरह से उनकी शहादत हुई है और उसके नतीजे में जो असरात पैदा हो रहे हैं शहादत की के एक मुद्दत गुजर जाने के बाद, जो असरात और बढ़ते चले जा रहे हैं और मुमकिन है कि आइंदा जो ज़माना आने वाला है उसमें और भी ज़्यादा बड़े असरात देखने को मिले और लाजमी तौर पर देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर लाजिम है कि उस ज़िंदगी को अच्छी तरह से समझा जाए। और ज़िंदगी को समझने के लिए लाजिम है कि उस फ़िक्री निज़ाम को, उन अफकार को समझना कि जिसकी बुनियाद पर इस तरह से ज़िंदगी गुजारी गई। क़ुरान, ख़ुद क़ुरान के बारे में ये जुमला मौजूद है, क़ुरान में मौजूद है कि लौ एते मिन गैर इंदिल्लाह लवजदु फीह इख्तलाफन कसीरा, यानी तदब्बुर करने को दावत दी है क़ुरान ने, गौर व फ़िक्र करने को दावत दी है, और गौर व फ़िक्र करने के बाद कहा कि लौ काना मिन इंद गैरिल्लाह, अगर ये गैर खुदा की तरफ से होता तो लवजदु फीह इख्तलाफन कसीरा, इसमें इख्तलाफ़ नज़र आता। एक क़ुरान जो 23 सालों के दरमियान में नाजिल हुआ है, अजीब अजीब हालात में, मक्के के हालात और थे, मदीने के हालात और थे, मदीने के शुरू के हालात और थे, बाद के हालात और थे, रसूलुल्लाह किन किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे थे, कहाँ वो गारे हरा की तन्हाई, कहाँ वो थोड़े से लोग, कहाँ जो थोड़े से लोग थे उनको पकड़ा जाता था, मारा जाता था, अजीतें की जाती थी, फिर वही आकर मदीने में हुकूमत करना, फिर आकर मदीने में हुकूमत के बाद शुरू में 4-5 सालों तक गुर्बत, फ़क्र, मजबूरी, भूख, प्यास, फिर उसके बाद कामयाबियाँ, वसत, हुकूमत का बढ़ना, दौलत का आना, ये सब कुछ बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होती रहीं, लेकिन सारी तब्दीलियों के दरमियान में फ़िक्री निज़ाम हमेशा एक रहा। और जो क़ुरान की सूरतें नाजिल होती रहीं, क़ुरान की जो आयतें नाजिल होती रहीं, उसका सिलसिला हमेशा जो है एक दूसरे से जुड़ा रहा और कंट्राडिक्शन नज़र नहीं आया, ना उस किताब में, ना उन सूरों में कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, ना उस ज़िंदगी में कि जो उन आयतों और उन इलाही सोच के साथ ज़िंदगी गुजारी जा रही थी। ये हमेशा बाकी रहने वाला है। क़ुरान में एक नुक्ता जो बयान हुआ है कि अलबत्ता वो शहीदों के लिए है, और हम रहबर शहीद के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं, रहबर शहीदों के लिए है कि आयत तो पूरी सुनते हैं, आप भी ने भी सुनी होगी, हमारे ऑडियंस है, मिन अल मोमिनीन अर्रिजाल सदकु मा अहदुल्लाह अलैह फमिनहुम मन क़ज़ा नहबह वमिनहुम मन यंतज़िर, और उसका आखिरी हिस्सा है ये कि वमा बदलु तब्दीला, उन्होंने तब्दीली नहीं की, यानी उसूलों में तब्दीली नहीं की, तरीक़ों में तब्दीली नहीं की, तरीक़े ज़िंदगी में तब्दीली नहीं की। तो ये अंबिया की ज़िंदगी में तब्दीली नहीं हुई, चाहे वो

की कोशिश की जाएगी, तो इस मोहर के साथ और इस इत्मीनान के साथ करेंगे कि उस पूरी ज़िंदगी पर अल्लाह ने अपने इनाम के ज़रिए से और एक तारीख़ की अजीम शहादत दे करके कि जो नहीं है तारीख़ में, पिछली बहुत सारी सदियों में ऐसी कोई शहादत नहीं है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि इस सदी का शहीद है, नहीं, कई सारी सदियों का शहीद है। हम ये नहीं सिर्फ कह के गुज़र सकते हैं कि इस सदी का एक अजीम इंसान है, नहीं, बहुत सारी सदियों में ऐसे अजीम इंसान नहीं नज़र आते। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को अगर जो खुद जिनकी राह पर इमाम रहबर इनकलाब ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और अपने उम्र के आखिरी लम्हे तक, आखिरी मरहले तक अपना पेशवा, अपना रहबर इमाम खुमैनी को समझते रहे, उसी बुनियाद पर जिस बुनियाद पर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद क़ुरान को, रसूलुल्लाह को और अहले बैत अलैहिस्सलाम को अपना पेशवा समझते रहे, उनके सामने हमेशा नहायत ही हम्बलनेस के साथ, नहायत ही तवाज़ो के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है। तो ये एक ऐसा सिलसिला है कि जो इंशाअल्लाह ताला शुरू कर रहे हैं और ये थोड़ी कुछ मुद्दत तक मुख्तसरी कोशिश की जाएगी ताकि तोलानी ना होने पाए, और अलग अलग दिन में अलग अलग पहलू पर गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन उन सारी गुफ्तगू का महवर ये होगा कि रहबर इनकलाब ने जो ज़िंदगी गुजारी है उस ज़िंदगी का फ़िक्री निज़ाम क्या रहा है, आइडियोलॉजी क्या रही है, किस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर एक ऐसी अजीम ज़िंदगी उभर कर और निखर कर सामने आ सकती है। अब मुमकिन है ये सवाल पैदा हो कि उस पर इतनी ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत क्या है, दो पहलू हैं। एक पहलू तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि देखें, जो वाक़या पेश आया, जो शहादत पेश आई, माह रमज़ान का वो वक्त, जो लम्हात गुज़रे हैं हमारे, आपके, सबके और बहुत सारे लोगों के, कि जो पूरी उम्मत के लिए ये मसला था, उम्मत इस्लामी के लिए, और उम्मत इस्लामी से हटकर दूसरे लोग भी इस कदर मुतासिर हुए कि मैंने बाज़ लोगों को सुना है कि किस तरीके से उन्होंने ज़्यादा वक्त निकाला है। कभी कभी ये होता है कि मुमकिन है कि लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं, बाज़ लोग वाकई उनकी ज़िंदगी पे असर हुआ है। तो इस हम दो पहलू से देखना चाहेंगे। एक पहलू इसलिए रहबर इनकलाब की और रहबर शहीद की ज़िंदगी और उनके अफकार को गहराई से देखना इसलिए ज़रूरी है कि अभी तक जो वाकया पेश आया है उन वाकयात से बहुत ज़्यादा जो हमारा जो राबता रहा है वो ज़्यादा इमोशनल राबता रहा है, और इमोशनल रबते जो हैं वो उसके अपने हदूद होते हैं, एक हद तक रहता है फिर कम पड़ जाता है, इमोशंस इंसान के जो है वो हल्के पड़ जाते हैं, तो उससे वो नतीजा नहीं मिल पाता है कि जो नतीजा होना चाहिए। तो इमोशनल रबता अलग है, लेकिन एक जो है फ़िक्री रबता, और वो फ़िक्री रबता भी, उसकी भी कुछ बुनियादें हैं जो आपके सामने इंशाअल्लाह अर्ज़ की जाएंगी, वो एक अलग मसला है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि जो हालात हैं अभी, इसमें बहुत बड़े किरदारों की ज़रूरत है, मुसलसल बहुत ही अजीम किरदारों की ज़रूरत है, यानी जो मारका है हक़ व बातिल का, जो ज़ालिमों के सामने मारका है। तो ये नहीं है कि रहबर इनकलाब ने अपनी ज़िंदगी गुजार के शहादत पेश करके एक मरहला तय करके अब सारा मामला ख़त्म कर दिया है, नहीं, बल्कि मुमकिन है कि ये मारका और भी शदीद हो, बल्कि सिर्फ मुमकिन नहीं कह सकते हैं, हम यकीन के तौर पर कह सकते हैं कि आखिरी ज़माने तक पहुंचने के लिए ये मारका बहुत और ज़्यादा शदीद होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे किरदारों की और ज़रूरत है, बहुत सारे किरदार पेश होंगे। अभी हम मुमकिन है एक रहबर की बात कर रहे हों, लेकिन उसी रहबर की ज़िंदगी की तरबियत के ज़रिए से करोड़ों लोग हुए हैं जो अब इस मारके को सर कर रहे हैं, इस मारके में मज़बूती से खड़े हुए हैं। तो ऐसे किरदार के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ इमोशनल रबता जो है वो ऐसे किरदार नहीं बना सकता है, मुमकिन ही नहीं है। इमोशंस वाले रबते बस ये होते हैं कि हाँ ठीक है, इंसान जो है उसका दिल मुतमईन हो जाता है, बस जिस दिन रहबर शहीद की शहादत हुई, जिस दिन शहादत हुई 10 रमज़ान को, उस दिन तो लोगों को नहीं मालूम हो पाया, लेकिन 11 रमज़ान को मालूम हुआ। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बताया कि घर में बैठा नहीं जा रहा था, रोज़ा था, भूख थी, प्यास थी, किसी हद तक गर्मी भी थी, हिंदुस्तान में तो किसी हद तक गर्मी भी थी, लेकिन लोग धूप में थे, निकले हुए थे, घरों से निकले हुए थे, देर देर तक सड़कों पे थे। वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही अजीम है, लेकिन वो असल में ज़्यादा इमोशन थे, और उससे इंसान फिर थोड़ा सा उसके दिल को राहत हो जाती है, ज़मीर उसका मुतमईन हो जाता है कि एक अजीम इंसान ने ज़िंदगी गुजारी है, हमने उसके लिए यह हक़ अदा कर दिया है, हम जो है रोज़े की हालत में हमने प्रोग्राम में शिरकत की।

प्रोटेस्ट में शिरकत की, एहतजाज किया, ये लेकिन ये काफ़ी नहीं होता है। काफ़ी इसलिए नहीं होता है कि इसके ज़रिए से बड़े किरदार नहीं बनते हैं, और जब बड़े किरदार नहीं बनते हैं तो बड़ा मारका भी सर नहीं होता है। और जो जो मारका है, जो हक़ो बातिल की जंग है, जो ज़ालिमों की ज़ालिमों के मुकाबले में अहल इंसाफ़ और अहल अदल की जंग है, वो तो जारी रहने वाली है। तो अजीम ज़िंदगियों को गहराई से समझने की इसलिए भी ज़रूरत होती है ताकि उन ज़िंदगियों को देखते हुए इंसान जो है मरहला तय करना उसके लिए आसान हो जाए। अब ये एक बहस है, मैं खाली इशारा कर रहा हूँ, पहले भी कभी गुफ्तगू की गई है कि क़ुरान में या दीगर इलाही किताबों में या और भी तारीख़ की बहुत सारी किताबों में बहुत ही अजीम किरदारों

की जो हमें करबला से मिलती है। खुदावंद आलम की बारगाह से दुआ है खुदावंदा हमारे इस खलील इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे तौफीकात में इजाफा फरमा। खुदावंदा हमें सही मानों में मोहम्मद आले मोहम्मद के पैरोकार और फॉलोअर्स में से करार दे। खुदावंदा आलम इस्लाम में जो अफरा तफरी है, जो हालात हैं, खुदा उसमें अमन व अमान पैदा कर, और शिया जहाँ भी हैं उनको अपने हिफ्ज अमान में रख, उनके दुश्मनों के तमाम सलाहियतों को नीस्त नाबूद फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।

जगह जमा हो गई थी। लेकिन आज हम इन अय्याम के मुनासिबत से एक और डायमेंशन को इस आयत को देखना चाहेंगे, और वो है जनाब सय्यदा फातिमतु ज़हरा की ज़िंदगी के लिहाज से कि बीबी भी अपने आखिरी दौर में इम्तहान के ये जो चार पांच तरीक़े हैं उससे गुजरी हैं। जहाँ तक खौफ की बात है, आप सोच हैं कि वो खातून जिसके बाबा सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन हों दुनिया से गुजर जाए, लेकिन बजाय पुरसा देने के उनके घर पर आग लगाई जाए, वलिनब्लुवन्नकुम बिशय मिनल खौफ, इससे ज्यादा खौफ की बात और क्या हो सकती है। जहां बीबी दरवाजे के पीछे आती हैं, धमकी दी जाती है कि हम आपके इस दरवाजे को जला देंगे, कहती है हम यहाँ हैं, जवाब मिलता है हमें परवाह नहीं है, कहती है हसन और हुसैन हैं, अली का नाम नहीं लिया है, तुम्हारे रसूल के नवासे हैं, लेकिन वही जवाब मिला कि हमें परवाह नहीं है। आप अगर उस जिंदगी को देखें, माल के लूटने की बात है, बाबा की वफात के बाद फदक मिल्कियत थी इस फातिमा की, उसे भी लूट लिया गया। और फिर जहाँ तक जिस्मानी अजियत की बात है, जनाब सय्यदा किस दरवाजे पर जो सीन बदन पर जो दरवाज़ा गिराया गया है, इस तरह से कि बीबी जो है दरवाजे और दीवार के दरमियान आ जाती हैं। अल्लामा मजलिसी बयान करते हैं कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि जब वो दरवाज़ा गिरा है उसमें एक मीख लगी थी जो सय्यदा के पहलू में आके पेवस्त हो जाती है। अज़दारा ने उसे ये जिस्मानी अजियत दी जा रही है, और जहाँ तक औलाद के की बात है, उसी प्रोसेस में जनाब सय्यदा के बतन में जो बच्चा था जिसे हम मोहसिन कहते हैं वो भी शहीद हो जाता। ये तमाम मसायब एक साथ आ जाते हैं, लेकिन ये सय्यदा ने किस तरह से सब्र से काम लिया है। बस एक मंजर को बयान करके हम मजलिस को ख़त्म करना चाहेंगे कि सय्यदा एक बार जब दरबार से आई हैं, जब फदक को नहीं दिया गया है, एक मरतबा अली से शिकायत करती हैं, कहती हैं अली आपकी कुव्वत बाजू को क्या हो गया है। अज़दारान हुसैन अली के लिए इम्तहान का मरहला बद्र और ओहद में नहीं था, खंदक और खैबर में नहीं था, बल्कि उस सवाल में था जो सय्यदा ने किया था। अली के पास कोई जवाब न था कि इस मजलूमा खातून को क्या कहे, बस खामोश रहे, सब्र करते रहे। अजान की आवाज बुलंद हुई, और जब मुअज्जिन ने अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, उस वक़्त अली कहते हैं बीबी आप चाहती हैं कि ये जुमला बाकी रहे तो मेरी तलवार नहीं निकलेगी, मेरी कुव्वत बाजू का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। उस वक्त फातिमा ने कहा हमने सब्र किया है और मामलात को अल्लाह पर हम छोड़ दें। खुदावंद इस कुरल बार कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को तो माफ़ फरमा, खुदावंद हमारे तौफीकात में इजाफा फरमा, आलम इस्लाम में अमन और सुलह की फ़िज़ा पैदा कर। खुदावंद खुसूसन वो बेगुनाह लोग, खुसूसन जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं गज़ा में, उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रख। तकफीरी अफवाज की तमाम सलाहियतों को नीस्त नाबूद फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक बार सूरह फातिहा और सूरह इख़लास की तलावत फरमा के जिन मरहूमिन के लिए मजलिस हैं उनको इसाले सवाब फरमा। अल फातिहा।